की तरफ तुम्हें ले जाएगी और तुम्हारा भरम बाकी रख लेती है। इसलिए उलमाए कराम कहते हैं, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर बहस में शामिल होना ज़रूरी नहीं है और हर ख़बर पर तज़किरा करना ज़रूरी नहीं है। कुछ जगहों पर खामोश रहना बंदा सीख ले तो उसके नजात का ये खामोशी ज़ामिन बन जाती है। चौथी वसीयत इमाम फरमाते हैं, व इकबाल बादहिम अला बादिन वल मुज़ावरा फ़इन्न ज़ालिका क़ुर्बतन इलैया। एक दूसरों को वेलकम करना, एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे की ज़ियारत करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, जब सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारती हैं गुजारते कम्युनिटी में ज़िंदगी गुजारते हैं उनका ख्याल करना, उनको वेलकम करना हम सब की दीनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है। अगर इंसान सच बोले, अमानतों को अदा करे, अगर इंसान ज़ियारत को मोमिनीन की एक फजीलत समझे, आता रहे जाता रहे, फ़ायदा क्या होगा? इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में इमाम फरमाते ये चीज़ें उनसे कह दो, मेरे चाहने वालों से, मेरे मानने वालों से, ये चीज़ें उन्हें मुझसे करीब कर देती हैं। और वतन इलैया, अगर आज 11वें इमाम से 10वें इमाम से हमें करीब होना है तो इन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। कहाँ क़ुर्बत हम तलाश करते हैं, कहाँ इमाम बता रहे हैं। अगर मुझसे करीब होना चाहते हैं इन सिफ़ात को तुम्हें आजमाना पड़ेगा और इन सिफ़ात पर अमल करना पड़ेगा। वला यशगलु अनफुसहुम बितमज़गीज़ बादहिम बादा, एक दूसरे का ख्याल करना है, वेलकम करना है। इमाम फरमाते हैं अपने वक्त को एक दूसरे के मजाक उड़ाने में खर्च न करना, एक दूसरे को खींचने में खर्च न करना। ये चीज़ें मुझे, इमाम फरमाते हैं ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं, ये मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता कि हमारा एक चाहने वाला दूसरे चाहने वाले का मजाक उड़ाए, हमारा एक चाहने वाला दूसरे चाहने वाले के आयबों को बयान करे, हमारा एक चाहने वाला दूसरे चाहने वाले के की दुश्मनी अपने दिल में रखे और उसे परेशान करे, उसे अजियत पहुंचाए। इमाम कहते मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। यहाँ तक इमाम फरमाते हैं वो हमारी विलायत से दूर हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उस पर अजाब नाजिल करता है। कुछ चीज़ें हमें इमाम से करीब करती हैं, कुछ चीज़ें हमें इमाम से बहुत दूर कर देती हैं। इमाम से दूरी यानी जहन्नम, इमाम से दूरी यानी आग, इमाम से दूरी यानी विलायत से दूरी है। इमाम कहते हैं वो काना फिल आखिरत मिनल खासिरीन, वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। लेकिन क्या करें, अभी तक जो हमारी ज़िंदगी गुजरी है 40 साल 50 साल ज़िंदगी गुजारी, किसी को परेशान करते हुए, किसी का माल लूटते हुए, किसी को धोखा देते हुए, किसी को खींचते हुए, किसी को डराते हुए, किसी को धमकाते हुए 40 साल गुजर गए, क्या नाउम्मीद हो जाए? इमाम फरमाते नहीं, वह अर्रिफहुम अन्नल्लाह गफरा लिमुहसिनिहिम, अब नेकियों का आगाज करो, अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा। इमाम ने उम्मीद जगाई लोगों के दिल में, अब तक जो हो चुका जो हो चुका, अब यहाँ से फुल स्टॉप लगाओ, एक नई ज़िंदगी नेकियों वाली ज़िंदगी का आगाज़ करो। नेकियों का आगाज़ करने के लिए टाइम नहीं देखा जाता, नेकियां शुरू करने के लिए इस्तिखारा नहीं देखा जाता, नेकियां शुरू करने के लिए इंसान सोचेगा नहीं, जहां भी इरादा बना ले आज से मुझे नेकियों का सफ़र शुरू करना है, बंदा शुरू करे, अल्लाह तबारक व तआला उन नेकियों का जो अपना फ़ायदा है सो फ़ायदा है उन नेकियों के ज़रिए से, अल्लाह तबारक व तआला गुज़श्ता गुनाहों को भी माफ़ फरमा कर देता है। इसलिए रिवायत में मौला फरमाते हैं, जो मगर वो शख्स जो अल्लाह का शिर्क इख्तियार करे मैं उससे राज़ी कभी नहीं हो जाऊंगा, जो मेरे औलिया में से किसी वली को नज़ीयत पहुंचाए मैं उससे कभी राज़ी नहीं होता, या जो मैं हमारे चाहने वाले की दुश्मनी दिल में रख कर पूरी ज़िंदगी गुजारे, इमाम फरमाते हैं वो हमारी विलायत से निकल जाएगा। वह खराजा अन विलायती, वो हमारी विलायत से, मेरी विलायत से, दसवें हम फरमाते हैं वो निकल जाएगा। वलम यकुन लहू नसीबुम फी विलायतना, ज़िंदगी भर
अली अली करता रहे, हुसैन हुसैन करता रहे, अगर मोमिन को तकलीफ़ पहुंचा रहा है तो इमाम फरमाते हैं हमारी विलायत का उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारी विलायत से कुछ भी नहीं मिलेगा। वो आऊदो बिल्लाहि मिन ज़ा

0: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे शैतान क्या है और शैतान क्या ट्रिक्स इस्तेमाल करता है। इंशाल्लाह आप एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें और अपने फीडबैक को कमेंट्स में ज़रूर कहें। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में मौलाना फसाद हुसैन साहब और सलामुन अलैकुम, और मौलाना कुमैल भोजानी साहब सलामुन अलैकुम, खुश आमदीद कहते हैं आप दोनों को। जज़ाकअल्लाह। तो हम आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। खुद शैतान जो है वो एक टॉपिक है जिसके बारे में लोगों के जहन में, लोगों की आम जिंदगी में कहा जाता है कि शैतान ने भड़का दिया, शैतान गुमराह करता है, शैतान है। हत्ता इंसानों को कहा जाता है तुम शैतान हो, ये शैतान है। मसलन अमरीका को कहा जाता है शैतान है, बुज़ुर्ग है। लेकिन ये कुल्लन, ये कॉन्सेप्ट ऑफ शैतान क्या है, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो शैतान के हवाले से, जैसे हमने कुरान में कहा कि शैतान अदू व मुबीन है, तो ये कैसा दुश्मन है जो दिखता नहीं है लेकिन दुश्मन भी है, और शैतान से हमारी दुश्मनी कैसी है? क्योंकि कुरान मजीद में शैतान का एक कॉन्सेप्ट दोस्ती का भी है कि शैतान दोस्त भी बन जाता है और शैतान अपने आप को दोस्त के उनवान से भी दिखाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये, जो शैतान हमारा दुश्मन है, हमारी शैतान से दुश्मनी कैसी है?
1: जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आपने फरमाया, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, लेकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि आज तक हमने तसव्वुर ये पाया जाता है कि शैतान हमें नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने सुन रखा है कि शैतान वो जो है वो जिन्नात में से होते हैं, चूँकि इब्लीस जो था वो एक जिन था, और जिन ये ऐसी मखलूक है जो नज़र नहीं आती, और उमूमन इंसान ने देखा नहीं है जिन्नात को, जिन दिखाई नहीं देते, तो जाहिर सी बात है शैतान भी नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पर ये चीज़ हम पहले समझ लें कि इब्लीस और शैतान जो है इसमें फ़र्क क्या है। देखिए, इब्लीस वो शख्स था जिसने शुरू में खुदा की 6000 साल इबादत की। तो इब्लीस एक ऐसी मखलूक है, जिन है वो, लेकिन एक ऐसी मखलूक है जो अपने इख्तियार से खुदा की इबादत कर रहा है, और 6000 साल की इबादत के बाद उसको जो मर्तबा उस ज़माने में हासिल था वो ये था कि वो फरिश्तों के दरमियान था, और यहाँ पर जिन में से था लेकिन फरिश्तों के दरमियान वो पहुँच गया था, चूँकि 6000 साल की इबादत जो है वो कम नहीं होती। अब देखें, यहाँ पर आके खुदा ने इतनी इबादत करने के बाद उसको आज़माना चाहा, क्योंकि खुदा का वादा ये है कि जब वो किसी मखलूक को फ्री विल दे के भेजता है, इख्तियार दे के भेजता है, तो उसको वो टेस्ट भी करता है और आज़माता भी है। अगर वो उसके टेस्ट में पास हो जाता है तो फिर खुदा मज़ीद उस पर उसकी रहमत नाजिल करता है, जो बहिश्त है, जन्नत है, और जो तमाम नेमात का ज़िक्र हमें मिलता है। तो इसी तरह से खुदा ने शैतान को भी आज़माया कि ये जो तूने 6000 साल की इबादत की है, ये अपने लिए की है, इन फरिश्तों को दिखाने के लिए की है, या मेरे लिए की है, ठीक, ताकि सबके लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और यहाँ पर वो दस्तूर जो है आया, जिसका कुरान करीम में भी ज़िक्र है, ये कहा गया कि मैंने एक ऐसी खिलकत को जो है खल्क किया है जिसका नाम आदम है, और फरिश्तों से कहा और इब्लीस से भी कहा कि इसके सामने सजदा करो। और ये वो मरहला था कि शैतान को झिझक महसूस हुई,
0: शैतान को या इब्लीस को?
1: इब्लीस को
0: जी,
1: असन तुम, इब्लीस को झिझक महसूस हुई, और यहाँ पर उसने सजदा करने से मना किया, हम सब जानते हैं। और यहाँ पर वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यहाँ पर ये समझ में आ गया कि ये इबादत जो थी इसमें एक अना का पहलू जो था वो काम कर रहा था इसके पीछे, वो तकब्बुर, अपने आप को बरतर समझना, ये तमाम जो मनफी और नेगेटिव जो पहलू थे जिसके वजह से ज़ाहरन ये शैतान इबादत कर रहा था, वो खुल के सामने आ गया। और यहाँ पर ये इब्लीस ने खुदा के इस फरमान की इताअत का जो है इनकार किया, तो, और ये मरहला था कि यहाँ पर खुदा ने उसे जो है फरिश्तों की बज़्म से निकाल दिया, और यहाँ से वो उसकी शैतनत का आगाज़ हुआ।
0: तो इब्लीस एक कैरेक्टर है, ठीक है, अगर मैं इसको सादा समझना चाहूँ, इब्लीस एक कैरेक्टर है
1: बिल्कुल,
0: जिसका इंसिडेंट कुरान में मेंशन किया।

0: किया गया है, जहाँ पर खुदा ने, आप इबादत जिसे कहते हैं, इबादत यानी अल्लाह की एक्चुअल इबादत, अल्लाह की इताअत यानी अल्लाह के हुक्म के सामने तस्लीम हो जाना। लेकिन कुछ फेल को तो अंजाम दे रहा था, लेकिन जो रूह उसकी है इबादत की, वो अल्लाह की इताअत करना, अब ओबे करना, ओबीडियंस में आना, वो उसके लिए रेडी नहीं था। और उसने, अल्लाह ने कहा कई बार कुरान मजीद में ये जिक्र हुआ है कि खुदा ने कहा सजदा करो, और उसने सजदे को रिजेक्ट कर दिया। और जैसा कि आपने कहा कि उसने तकब्बुर का भी कहा कि मैं तो आग से बनाऊँ, ये मिट्टी से बनाए, तो यहाँ पर वो किब्र और तकब्बुर का पहलू भी हम देखते हैं, बस यहाँ पर आ गया। अब आप कह रहे थे इबलीस और शैतान के बीच में फ़र्क, अब यहाँ से इबलीस को उस बज़्म से जुदा कर दिया गया, अब इसे शैतान का क्या है फिर?
1: जी, तो देखें, इबलीस ने जो काम किए उसमें सबसे पहला काम जो था वो ये था कि उसने तकब्बुर किया, अपने आप को बरतर समझा। और कभी ये होता है कि इंसान अपने आप को बरतर समझता है, लेकिन फिर भी खुदा अज़्ज़ा वजल और इस जैसी अजमत के सामने जो है, फिर भी वो कहता है कि ना, मैं उससे बरतर नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर आकर उसने खुदा की नाफरमानी करते हुए खुदा के सामने एक चैलेंज पेश कर दिया। और वो चैलेंज क्या था? वो ये था कि मैं अब तेरा जो हिदायत का रास्ता है उसके ऊपर बैठ जाऊँगा और क्या करूँगा। यही हज़रत आदम कि जिसकी वजह से मुझे तूने निकाला है, मैं इसको और इसकी औलाद को जो है गुमराह करूंगा, अगवा कर लूंगा, और तेरे रास्ते पर जो तेरे हिदायत का सिरात मुस्तकीम है उस पर रहना मैं पसंद नहीं कर रहा, और मैं इन्हें रहने भी नहीं दूंगा। ये एक चैलेंज खुदा के सामने पेश कर दिया, यानी इसके तकब्बुर का ये आलम जब हुआ, तब जो है हम कह सकते हैं कि अब इबलीस वो शैतान के दायरे में आ गया। तो यहाँ से शैतान का मफहूम हमको यूँ समझ में आता है कि हर वो चीज़ जो खुदा के मुकाबिल में आकर खड़ी हो जाती है, खुदा के मुकाबिल में, चाहे वो तकब्बुर के ज़रिए से हो या चाहे वो हर नाफरमानी के ज़रिए से हो, वो हम कहेंगे वो शैतानत के दायरे में आ जाती है।
2: और दूसरों को रोकता हो खुदा की राह से,
1: बिल्कुल
2: खुदा बहकाता हो लोगों को, तो वो भी वो शैतान है।
1: वो भी शैतान है, यानी हर वो चीज़ जो खुदा से आपको दूर ले जाता हो, खुदाई काम से आपको दूर ले जाता हो, खुदा की नाफरमानी पे आपको मजबूर करता हो, वो हो गया शैतान।
0: तो यहाँ पर शैतान और इबलीस के बीच में, इबलीस पहले एक फरिश्ता था, फिर उसने नाफरमानी की, तकब्बुर किया, खुदा को चैलेंज किया,
1: फरिश्ते की तरह।
0: जिन था फरिश्ते की तरह। तो अब हम जो कहते हैं शैतान, अब इससे माना क्या है? यानी वो इबलीस था वही शैतान है, यानी शैतान जो है वो एक मेन शैतान है, उसकी एक आर्मी है शैतान के, इन्हें एक आम इंसान शैतान को कैसे तसव्वुर करे?
2: सही जी, बिल्कुल। देखिए, वो जो इबलीस है, और जब वो आया शैतान की सूरत में बना, यानी वो शैतान हो गया, यानी उसने ये कहा कि मैं लोगों को खुदा के रास्ते से रोकूंगा। अब वो अकेले काम नहीं कर सकता है, इसलिए कुरान में हम देखते हैं कि शयातीन का जिक्र है कि बहुत सारे शैतान, शयातीन अल जिन्न वल इंस, इंसानों में भी बाज़ हैं कि जो उसके जो है वो जो शैतान है। और इसके अलावा बाज़ रवायात में लश्कर का जिक्र है, जुनूद शैतान, के बाज़ लोग हैं कि जो शैतान का लश्कर होते हैं। तो शैतान है कि जो खुद भी लोगों को बहकाता है, उसकी एक पूरी आर्मी है, उसका एक पूरा नेटवर्क है जिसके ज़रिए से वो लोगों को बहकाता है। और हो सकता है बहुत, यानी जब ये कहा जा रहा है कि आर्मी है, तो इसका मतलब ही नहीं कि शैतान किसी से आकर के कहेगा कि तुमको यहाँ आकर के रजिस्ट्रेशन करना है और आकर के हमारी आर्मी में आकर के जो है वो तुम शामिल होगे, नहीं। बल्कि कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो शैतान का आदमी जो है वो बन जाता है। जैसे बहुत सारी एजेंसीज होती हैं कि वो लोगों को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं और उसको पता भी नहीं लगता है कि वो मसलन वाल एजेंसी के लिए जो है वो काम कर रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो यानी शैतान बजाते खुद इस दुनिया में आके कोई फेल को अंजाम नहीं देता है, अगर मैं सही समझाऊं तो शैतान बजाते खुद कोई फेल अंजाम नहीं देता है, वो लोगों को डायरेक्ट करता है। और लोग जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहीं पर अगर हम इस डिस्कशन के अंदर एक पॉइंट और ऐड कर दें कि शैतान का रोल क्या है, यानी शैतान, मिसाल के तौर पर मैं एक इंसान हूँ, खुदा चाहता है मेरी हिदायत हो, और उसी राह हिदायत पर शैतान बैठा हुआ है, और शैतान चाहता है कि मैं

0: आयत होने नहीं दूंगा, ठीक
1: बिल्कुल
0: है ना। अब यहां पर एक इंसान है, उसके सामने दो ऑप्शंस हैं, एक राह हिदायत है खुदा की तरफ से और एक गुमराही का रास्ता है शैतान की तरफ से। अब इंसान ये वसत में, बीच में इंसान, इंसान के पास, यानी ये आया शैतान उसे फोर्स कर सकता है, ये इंसान के पास चॉइस है कि इंसान खुद अपने इख्तियार से जो है यहाँ पर मसलन सबमिट करता है।
1: बिल्कुल, जैसे रवायात में, आयात में, वो कि चॉइस है उसके पास में, और शैतान से वो सिर्फ जो काम करता है वो बहकाने का काम करता है, कुछ यानी बहकाता वो किस तरीके से है, वो क्या करता है, वो किसी को मजबूर नहीं करता है किसी काम के लिए। जैसे बाज़ लोग कहते हैं शैतान ने बहका दिया था इसलिए हमने काम कर दिया, तो ये बिल्कुल भी जहन में ना आया कि शैतान ने गोया मजबूर कर दिया था, नहीं मजबूर नहीं किया था, बल्कि उसने क्या किया, मिसाल के तौर पर किसी चीज़ को बहुत अच्छा बना करके पेश किया हमारे सामने, और चूंकि उस चीज़ की ख्वाहिश हमारे अंदर है तो हम उसकी तरफ चले गए। सही, तो क्या हुआ कि उस चीज़ की तरफ जाने की ख्वाहिश हमारे अंदर है,
0: पहले से थी।
1: यहाँ पर असली गलती किसकी है, असली गलती शैतान की नहीं, असली गलती इंसान की है, और वो इसी वजह से है हमारे यहाँ कि वो शैतान से हर हाल में बच सकता है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि शैतान उसे किसी काम के ऊपर आकर के मजबूर कर दे, बल्कि उसकी जो फ्री विल है वो आखिरी वक्त तक के बाकी रहेगी, और जब भी चाहे वो वहाँ से पीछे हट सकता है।
2: दिवस तो, मैं एक नुक्ता यहाँ पर, चूंकि आपने कहा कि शैतान बराह रास्त खुद आता है, वो खुद चल के आता है गुमराह करने के लिए, कैसे होता है, तो देखें रिवायात वगैरह अगर आप देखें या कुरान में भी जो जिक्र है, तो अलबत्ता खुद शैतान का जो सबसे पहला हम कहेंगे इंस्टेंस या मिस्ताक जो इबलीस था, इबलीस पहले शैतान बना, सबसे पहला शैतान इबलीस है, फिर उसने अपनी आर्मी बनाई गोया, तो बिल्कुल आता है खुद इबलीस जो है वो आता है बहकाने के लिए, लेकिन उसके टारगेट्स जो है वो बड़े टारगेट्स होते हैं, जैसे वो अंबिया के पास जाता है या कोई बड़ी शख्सियत है जो पाक और जो है खालिस तरह के
0: जिनको
2: लोग हैं,
0: गुमराह करने से पूरी कौमें गुमराह हो सकती हैं।
2: बिल्कुल, तो बड़े टारगेट्स जो है उसको खुद शैतान आता है, जिस तरह से हमें रिवायात में मिलता है, जिस तरह से हमें आयात में मिलता है कि वो हज़रत आदम को बहकाने के लिए खुद इबलीस गया था, जैसे हज़रत नूह के हवाले से मिलता है, हज़रत नूह और इबलीस की गुफ्तगु मिलती है हमें रवायात में, तो ये उसने, उसको मालूम है कि ये अम्बिया जो है मुखलसीन में से हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश करता है। तो यहाँ से हम शैतान से ये सीख सकते हैं कि जो है कोशिश जो है वो करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर सी बात है वो भी देख रहा है जो इंसानों की तादाद है वो कम नहीं है, और उसने जो है चैलेंज भी दिया है, लउगवियन्नहुम अजमईन, सबको मैं बहकाऊंगा, कोशिश तो ज़रूर करूंगा, तो जाहिर सी बात है वो अपनी टीम बनाता है, वो अपना जो है जुनूद या लश्कर बनाता है, और वो लश्कर उसी तरह से जिस तरह से बराह रास्त भी उसका लश्कर है कि वो जो इसके लश्कर में, उनको भी पता है कि हम किसके लश्कर में हैं, लेकिन ऐसा भी लश्कर है जो सेकेंड लेवल थर्ड लेवल पे जो इनडायरेक्टली जो है उसके झांसे में फंसे हुए उसके लिए काम कर रहे हैं लेकिन उसको नहीं पता। तो शैतान का मसला जो है वो जहनी मसला नहीं है, कभी हम ये ना सोचे कि बस एक चीज़ है जो कहीं से आके कुछ कान में कह देगी मिसाल के तौर पे, या एक ऐसी चीज़ है या जो बुरा हम कभी कभी सोच लेते हैं यही शैतान है, ना, शैतान उसकी एक हकीकत है, और शैतान इंसान के शक्ल में भी जो है ज़ाहिर हो सकता है, यानी ये खुद इंसान जो है वो इतना अपने आप को शैतानी कामों में मुलव्विस कर लेता है कि खुद जो है उसकी इंसानी हकीकत तब्दील हो जाती है, वो शैतान बन जाता है।
0: मैं एक मिसाल देता हूं ताकि बात जो है और इसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दो गेम्स होते हैं, एक गेम कार्ड्स वाले गेम होते हैं जैसे ऊनो वगैरह या इस टाइप के गेम्स होते हैं, या कुछ गेम्स होते हैं जो मसलन चेस या ओथेलो इस टाइप के गेम्स होते हैं। दोनों में फ़र्क ये होता है, एक गेम वो होता है जो कार्ड्स वाले गेम होते हैं, वहाँ पर दुश्मन के सामने आपको अपने पत्तों को छुपाना होता है, अगर दुश्मन को आपके पत्ते पता चल गए तो क्या होगा, आप यानी जो इंसान गेम खेल रहा है वो हार जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसे चेस या ओथेलो या इस टाइप के जो गेम्स होते हैं उन गेम्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर दुश्मन के सामने स्ट्रैटेजी खुली हुई होती है। तो शैतान से हमारा रिलेशन कौन सा रिलेशन है, कि आया शैतान जो है वो अपने कार्ड्स को छुपाए हुए है, या शैतान और हमारी दुश्मनी ओपन है और उसकी स्ट्रैटेजीज भी हमारे लिए ओपन है, या कभी ऐसी है कभी वैसी है, आप लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे?
1: ये यूँ तो शैतान छुपा हुआ है, वो हिडन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उसका तरीका है, उसकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं,

0: वो हमारी आयतों में, रवायतों में उसको बयान किया गया है कि शैतान किस चीज़ के ज़रिए से लोगों को बहकाता है, क्या चीज़ सबब बनती है कि वो लोगों को जो है वो बहका देता है। तो उसका प्लान, उस वो कैसे बहकाएगा, ये सब कुछ मालूम है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान के अंदर गुस्सा है, ज़्यादा गुस्सा करता है वो, किसी के अंदर हसद है, इस तरह की चीज़ें अगर किसी के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि शैतान इसके ज़रिए से आकर के उसे जो है वो बहका देगा।
1: तो ये खुला है,
0: तो ये
1: यानी
0: खुला हुआ
1: ये,
0: है जी
1: हाँ
0: कि अगर
1: कि
0: ये
1: हाँ
0: है
1: ये,
0: तो शैतान आएगा।
1: हाँ यानी शैतान, यानी इंसान को ये तसव्वुर करना पड़ेगा कि एक दुश्मन है जो खुली हुई स्ट्रैटेजीज आपको कुरान ने, रसूल ने, आइम्मा ने आपको स्ट्रैटेजीज बयान कर दी हैं कि शैतान कौन सी स्ट्रैटेजी से वारिद होगा। और आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि भाई एक शैतान है, क्योंकि हदीस हमारे वहाँ है कि मासूम कहते हैं कि भाई शैतान तुम्हारा दुश्मन है, क्यों तुम ऐसे जिंदगी नहीं जीते कि आपका एक दुश्मन है, आपको दुश्मन गुमराह करेगा, आप ऐसी जिंदगी क्यों नहीं जीते हो। यानी ये तो हमारे लिए क्लियर है। तो यहां पर ये कि खुली हुई, यानी वो खुली
0: इस
1: हुई
0: एतबार
1: दुश्मनी,
0: से, हाँ इस तरह से खुला हुआ है,
1: हाँ
0: जैसे वो गेम का आपने जिक्र किया,
1: जी
0: बिल्कुल बहुत अच्छी मिसाल थी कि जहां पर आपको पता है कि वो कर क्या रहा है और आपको भी मालूम है कि जीतने के स्ट्रेटजीज क्या, या मालूम होना चाहिए कम से
1: जी
0: कम। अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो सीख ले कम से कम इस पॉडकास्ट के जरिए, एक हद तक कुछ स्ट्रेटजीज जो है
1: हाँ
0: शैतान के जो ट्रैप्स है और उसके तरीक़ेकार जो है वो
1: हाँ
0: समझने के लिए, और हमारी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कम से कम।
1: यानी अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि शैतान की, जो व्यूवर्स के लिए शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, कि शैतान क्या स्ट्रैटेजीज को अपनाता है, कैसे एक ट्रैप्स क्रिएट करता है। अगर इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करें, कुछ पॉइंट्स नेचुरली सी बातें सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक हम लोग शुरू करना चाहें, अगर पहला पॉइंट कि शैतान के ट्रैप के तरीके क्या हैं।
0: ये शैतान के ट्रैप का एक बड़ा तरीका है लोगों को लंबी लंबी उम्मीदें दिलाना, बहुत बड़े बड़े वादे करना, जिसको कहते हैं सब्ज़ बाग दिखाना, कि वो मिसाल के तौर पर कोई भी इंसान की मुख्तलिफ तरह की ख्वाहिशात होती हैं, फ़लाँ काम करे, फ़लाँ जगह कामयाबी हासिल हो, अगर पैसा कमाना चाहता है, बिज़नेस कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, कि वो ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से दौलत कमा सके, तो ये क्या है, उसकी ज़रूरत है, उसकी ख्वाहिश है। लेकिन शैतान यहाँ पर आकर क्या करता है, उससे कहता है कि फलां वो जो हराम काम है, अगर तुम उसे करोगे तो उसमें तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखो फलां आदमी है, उसने किया है, वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो तुम्हारी तरह का, मिसाल के तौर पर शिया है, उसने भी तो किया है, तुम कौन से अनोखे हो, मसलन तुम नहीं कर सकते, अगर वो करोगे तो ये होगा, फिर उसके बाद ये कर सकते हो, फिर उसके बाद ये कर सकते हो। तो ये क्या है, ये बाहर से कोई चीज़ नहीं है जो शैतान ने ला करके उसके अंदर रख दी है, नहीं, खुद इंसान के अंदर एक ख्वाहिश है जो अपने आप में, जिसमें कह सकते हैं न्यूट्रल ख्वाहिश है, यानी दौलत कमाना अपने आप में ना बुरी चीज़ है ना अच्छी चीज़ है, अगर अच्छी चीज़ के लिए दौलत कमा रहा है तो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ के लिए कमा रहा है तो बुरी चीज़ है, तो एक न्यूट्रल ख्वाहिश है, उसको आकर के मिसयूज़ करता है और कहता है कि अगर तुम हराम काम के ज़रिए से जो है वो दौलत कमाओगे तो तुम्हारा इतना फ़ायदा होगा। तो एक जो स्ट्रेटेजी उसकी कह सकते हैं वो है कि लंबी आरजुएं जो है वो उसके अंदर पैदा कर देना और उसको सब्ज़ बाग दिखाना कि अगर तुम ये करोगे तो तुम मिसाल के तौर पर बहुत बड़े आदमी बन जाओ।
1: तो एक पहला पॉइंट ये है कि लंबी उम्मीदें, बड़ी आरजुएं। मौलाए कायनात नहजुल बलागा में एक जगह कहते हैं, जब दुनिया के बारे में कहते हैं और दुनिया की उम्मीदों के बारे में, तो मौला कहते हैं कि आह कितना लंबा सफ़र है, आखिरत के बारे में जाके कहते हैं, जब कहते हैं कि वो है कितना बड़ा सफ़र है उसके मुकाबले में, ये दुनिया और ये दुनिया की तमाम चीज़ें बहुत छोटी हैं जब उसको हम रिलेटिविटी में सही से रखें। यहीं पर एक और पॉइंट भी है कि बड़ी उम्मीदें रखना, जैसे आपने कहा, पॉजिटिव कामों के लिए ये बुरी चीज़ नहीं है। यानी आप इंसान जो है, बुलंद हिम्मती जो है वो इंसान के अंदर होनी चाहिए, और मसलन रिवायतों में भी कि इंसान की वैल्यू क्या है, कदर रजुल अला कदर हिम्मत ही, इंसान की वैल्यू उतनी है जितनी उसने हिम्मत और इरादा किया है उसकी बुलंद हिम्मती के ऊपर। तो हम ये एम्फसिस करते हैं कि इंसान की हिम्मत बुलंद होनी चाहिए, लेकिन एक है बड़ी हिम्मत का होना और एक है फेक आरजुओं के पीछे जाना, और एक वो है कि शैतान के ट्रैप को ना समझना।
0: जी बिल्कुल, यहाँ पे यही लंबी आरजू जो है, इसी नुक्ते को शायद अगर एक और मुख्तलिफ तरीके से हम पेश करें तो शायद यूँ कह सकते हैं कि एक अक्लमंद इंसान जब कोई काम करता है, या यूँ कहें कि किसी ग्राउंड में जब जाता है, तो वो

0: देखता है कि वो ग्राउंड का दायरा कितना है और उस एतबार से अपनी फ़ालियत को अंजाम देता है ना। जैसे कि वो कहावत भी है कि आप अपने पैर उतने फैलाएं जितना आपका कंबल है। तो अक्लमंद इंसान जो काम करता है वो ये है कि वो पैर उसके उतने ही फैलाता है जितना उसका कंबल है। तो ये लंबी आरजू के जिसकी मजम्मत की गई है उससे मुराद यही है कि आप दुनिया की जो ख्वाहिशात है वो दुनिया में रहते हुए इस अंदाज में इन ख्वाहिशात को लंबा करें कि वो दुनिया की तरह हो, क्योंकि दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है। मेरी उम्र जो है वो लिमिटेड है, बिलाखर जो है मुझे 50, 60, 70 साल में जाना है यहाँ से, तो मैं उस एतबार से अपनी आरजुओं को जो है लंबा करूँ। लेकिन अगर मैं उससे लंबा करता हूँ तो उसको फिर रिवायात में तूलुल अमल का जो है उन्वान दिया गया। जैसे वो वाक़या भी अभी मेरे जहन में आ रहा है, मैं यहाँ पे बयान कर देता हूँ। हारून जो खलीफा रहा है अब्बासियों का, उनके ज़माने में जो है हारून को ख्वाहिश हुई कि कोई सहाबी रसूल से उसे रिवायत सुनना है। अब उस ज़माने में जो है अगर सहाबी कोई मिले भी तो शायद मसलन 120, 130 साल की उसकी उम्र शायद होगी। तो कहा कि नहीं, मुझे किसी इस तरह के सहाबी से जो है ख़िताब करना है, सुनना है, रिवायत सुनना है। तो बहरहाल एक सहाबी को ढूंढ के वो बाल्टी में डाल के, इतने ज़यीफ़ हो चुके थे वो कि बाल्टी में डाल के उनके सामने लाया गया। और हारून ने पूछा, बताओ रिवायत बताओ रसूल से। और बहरहाल एक शरफ़ है कि रसूल से जो है, रसूल के सहाबी से एक रिवायत को सुने। उसका मज़मून यह है कि उसने कहा कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी आरजुएं जो है वो भी लंबी होती जाती हैं। तो बड़ा खुश हुआ और ये हारून खुश हुआ और उसने जो है एक थैली सोने के सिक्के से भरी हुई उसको दे दी और कहा कि जाओ खुदा हाफिज़, ये तुम्हारा इनाम है, बहुत अच्छी रिवायत थी। तो ये दरवाजे तक पहुंचता है, उसको उस बाल्टी में जो लेके आए थे दरवाजे तक ले जाते हैं। वो रोकता है, वो जो खुदाम होते हैं उनको रोकता है, कहता है कि एक सवाल रह गया है हारून से, मैं पूछ लूँ अभी। ठीक है, कहते हैं लेकर आते हैं हारून के पास। तो हारून कहता है कि क्या हुआ, क्यों लौट के आए। उसने कहा ये जो थैली आपने दी है ये सिर्फ एक बार के लिए या हर महीना आप देंगे। तो हारून फिर ये रिवायत को दोहराता है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे उसकी
1: आरजू
0: आरजुएं
1: भी
0: जो
1: जो
0: है, अब देखें तो इस तूलुल अमल या
1: है
0: लंबी लंबी आरजू, इनकी जो है मजम्मत हमारे यहाँ पे की गई है।
1: ठीक है। तो एक
0: जी
1: ट्रैप का तरीका ये है कि शैतान जो है वो ऐसे जगह आपको इन्वॉल्व कर दे कि आप जो हैं एक ख्वाब और ख्याली दुनिया में चले जाएं और इतनी हाई एक्सपेक्टेशन ज़िंदगी से रखने लगें कि आप नेचुरली ज़िंदगी से फाइनली डिसअपॉइंट हो जाएंगे, खुदा के रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे, या ऐसी ज़िंदगी जीने लगेंगे जो रियलिस्टिक नहीं होगी, जो जो डिवाइन नहीं होगी, जो अल्लाह के रास्ते पे नहीं लेके जाएगी। तो ये है कि पहली चीज़ जिससे हमें परहेज़ करना है वो ये है कि ज़िंदगी में गोल्स होने चाहिए, लेकिन गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए और वो गोल्स होने चाहिए जो हमें खुदा तक पहुँचाएं, नबी तक पहुँचाएं, इमाम तक पहुँचाएं, ना कि वो गोल्स होने चाहिए जो शैतान हमें ट्रैप के तहत जो है हमें पहुँचाना चाहता है।
2: अपने उसी गोल के एतबार से हमारी ज़िंदगी हो,
1: बिल्कुल
2: हम जो कुछ कर रहे हैं वो उसी को हासिल करने के लिए हो। यानी कभी कभी होता है कि बाद जवान सोचते हैं कि हमें ऐसे ही कोई अच्छी नौकरी ऐसे मिल जाएगी, हमारे फलां दोस्त को फलां रिश्तेदार को मिल गई थी और देखिए उनकी ज़िंदगी बन गई, उसने ना बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की ना जो है वो बहुत मेहनत की और आज देखिए वो। तो ये जो है एक ट्रैप है कि जिसके ज़रिए शैतान बहका देता है।
1: जी। अभी अगर हम लोग दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ जाएं शैतान की, तो मिसाल के तौर पर शैतान के वादे, क्योंकि कुरान में दो किस्म के वादे हैं,
0: बिल्कुल
1: एक खुदा का वादा है जिसके ऊपर रहबर मौज़म बहुत ताकीद करते हैं कि अल्लाह के वादों पर इंसान को भरोसा होना चाहिए, जो अल्लाह ने वादा किया है वो सादिक हैं, वो सच्चे हैं, वो पूरे होंगे एक तरफ से। दूसरा शैतान भी तो वादे करता है और क्योंकि वो ल्यूक्रेटिव होते हैं, दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही सजा के और बहुत ही उसको खूबसूरत बना के पेश करता है। तो ये एस्पेक्ट जो है दूसरा वाला कि शैतान वादों के ज़रिए से इंसान को ट्रैप करता है।
0: जी, इस हवाले से कुरान में हमें एक खूबसूरत जो है आयत मिलती है। दर हकीकत ये कॉन्वर्सेशन है उन लोगों में जो जिनको अज़ाब हो रहा है जहन्नम के अंदर, ये मुअज़्ज़ब है, इनके ऊपर अज़ाब नाजिल हो रहा है।

0: तो ये जो है मुब्तला है अजाब में, और ये शैतान के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक, और शैतान को बुरा भला कह रहे हैं, मलामत कर रहे हैं। तो शैतान ने जवाब दिया वहाँ पर, और बड़ा खूबसूरत
1: हाँ,
0: जवाब
1: ये लोग
0: जो,
1: शैतान से कंप्लेन कर रहे हैं
0: जी, और शैतान
1: रो,
0: को मलामत कर रहे हैं बुरा
1: हाँ
0: भला,
1: हाँ हाँ ये
0: ठीक
1: नहीं
0: है,
1: कंप्लेन
0: कि
1: करेंगे
0: तुम
1: ते,
0: बायस बने हो कि हम
1: हाँ
0: यहाँ पर आ
1: तेरी
0: गए
1: वजह
0: हैं।
1: से हम लोग फंस गए भी, हम लोग जहन्नम में हैं और सजा
0: जी
1: हम लोग को मिल रही है तेरी वजह से। अब
0: बिल्कुल
1: शैतान यहाँ पे रिप्लाई कर रहा है,
0: जी। शैतान क्या कहता है कुरान की ज़बान में, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वमा काना ली अलैकुम मिन सुल्तानिन, यानी सबसे पहली बात तो मैं तुम्हारे सामने ये वाज़े कर दूँ, शैतान कह रहा है कि दुनिया में मुझे तुम्हारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं था, कोई
1: हाँ
0: सल्तनत मेरी नहीं
1: हाँ
0: थी,
1: नहीं तुम पूरी तरह मेरे कंट्रोल में नहीं थे।
0: नहीं थे। यानी पहली बात तो ये कि
1: इन्हें पावर जो
0: उन, हाँ,
1: है
0: इंसान के ऊपर मेरा इख्तियार और पावर
1: नहीं
0: नहीं
1: था।
0: था। लेकिन क्या हुआ, मैंने क्या किया, इल्ला अन दाउतुकुम फस्तजब तुम ली, मैंने तुम्हें दावत दी मुख्तलिफ वादों के ज़रिए से, और चीज़ों को खूबसूरत बना के मैंने तुम्हें अपनी तरफ बुलाया, जबकि तुम जानते थे कि ये वादे जो है बाजन खाली है, चूंकि तुम कर चुके थे, गिर चुके थे, फिर भी तुम मेरे पास आ जाते थे, और मैंने बुलाया तुम्हें और तुमने जवाब दिया, और तुम खुद मेरे पास चल के आए हो। तो देखें यहाँ पे वो फ्री विल का जो उंसुर है काफ़ी अहम हो जाता है। फिर शैतान कहता है फला तलूमूनी, मुझे मलामत मत करो, वलूमू अनफुसकुम,
1: खुद अपने
0: अपने
1: आप को
0: आप
1: बुरा
0: को
1: भला
0: बुरा
1: कहो।
0: भला कहो। तो
1: इतना
0: ये वादे,
1: खबीस
0: और
1: है शैतान, इन्हें पहले
0: जी
1: फंसाता है, वादे
0: जी
1: देता है, फिर इंसान को ट्रैप करता है, इंसान ट्रैप हो
0: बिल्कुल
1: जाता है, और ट्रैप होने के बाद जब उसको जब सजा मिलने लगती है तो इंसान शैतान से पूछता है, भाई क्या तुमने मेरे को फंसा दिया? तो शैतान कहता है, मैंने सिर्फ एडवर्टाइज की थी,
0: जी। लेकिन
1: खरीदा
0: बहुत ही
1: तुमने। शैतान का काम क्या है कि सिर्फ एडवर्टाइज करना,
0: जी
1: मार्केटिंग करना, आपको खाली ऑप्शंस देना, चूज
0: जी
1: इंसान ने खुद किया है।
0: और इस मार्केटिंग का नाम भी कुरान ने रखा है ज़ुख़रुफ़ल क़ौल, ये इस्तेलाह कुरान ने इस्तेमाल की है कि इस अंदाज़ से उसने लुभाया है हमें, और इस अंदाज़ से चीज़ों को हमारे लिए पेश किया है, और उसको जो है खूबसूरत बना के पेश किया है, कि बहरहाल इंसान जो है उसके बहकावे में आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी है इंसान इन चीज़ों के बारे में पहले से मुत्तले हो। पहली बात तो जो इब्तिदा में
1: इन्फॉर्म्ड
0: आपने
1: रहे
0: कहा
1: जी।
0: कि मेरा एक दुश्मन है जो मेरे अतराफ में लगा हुआ है, यानी उसने अपनी ड्यूटी समझ के मुझे बहकाना है, एक ऐसी चीज़ मेरे अतराफ में। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि शयातीन इंसान के इर्द गिर्द उस तरह से हैं, यानी उनकी तेदाद इस हद तक है कि जैसे एक गोश्त के अतराफ में मक्खियाँ घूमती हैं, देख रहे हैं। यानी अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि शैतान कोई आसान चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ नहीं है कि एक ख्याल आ गया बस, ना, शयातीन जो है बाकायदा मखसूसन मोमिनीन के लिए, रिवायत में मिलता है कि अहले बैत ने कहा है कि जो हमें चाहता है उसके बनिस्बत शयातीन ख़ास जो है प्लानिंग करते हैं, गोया सिर्फ़ और सिर्फ शैतान का काम यह है कि इस तरह के मुहिब्बीन और मोमिनीन को बहकाना। तो जी बिल्कुल
1: वही कुरान मजीद में वो जो है कि वला यगुरन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, शैतान खुदा के ज़रिए तुम्हें ना बहकाए। ये बहुत अहम है कि यानी ये सोचे कि सिर्फ सिर्फ गुनाह के ज़रिए, सिर्फ बुराइयों के ज़रिए बहकाएगा
0: बिल्कुल
1: शैतान, नहीं
0: बिल्कुल
1: बल्कि खुदा से जो हमारा राबता है, अहले बैत से जो राबता है, उसके ज़रिए भी शैतान जो है वो बहकाने की कोशिश करता है। और वो क्या है, कभी कभी इंसान सोचता है कि मैं तो इतना नमाज़ पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, शैतान मुझे इस तरह से नहीं बहकाएगा, मैं गोया जो है शैतान के कंट्रोल में नहीं आ सकता हूँ, या मैं मुहिब्बे अहले बैत हूँ, मैं तो सादत तक पहुँच ही जाऊँगा। ये जो है इसके बारे में, इसकी तरफ इशारा है कि वला यगुरन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, के शैतान जो है वो तुम्हें खुदा के ज़रिए
0: जी
1: तुम्हें ना बहकाए, कि खुदा की रहमत का वादा दे करके, खुदा के करम का वादा दे करके, या तुमने जो इबादतें की हैं खुदा की, उसके ज़रिए से वो तुमको आकर के बहका दे।
0: हाँ, शैतान ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट कर दे कि
1: जी
0: भाई मैं
1: बिल्कुल
0: तो कुरान मजीद में है यहूदियों के लिए कि हमें आग जला नहीं सकती है, हमें आग हमारे से नज़दीक नहीं आ सकती है, यानी इस किस्म के कॉन्फिडेंस में इंसान आ जाए
1: बिल्कुल
0: कि नहीं मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो नेचुरल सी बात है कि वो इस तरफ से गिरेगा या उस तरफ से गिरेगा, फिर जब तक वो बैलेंस उसके अंदर नहीं होगा। अच्छा, यही खुदा वादे करता है और वादों के ज़रिए से इन्हें, सॉरी, उसी तरीके से शैतान भी वादे

0: करता है और शैतान के वादों के ज़रिए से शैतान बहकाता है। कुछ अगर और चीज़ें अगर वादों के हवाले से डिस्कस कर सकें।
1: जी देखें, ये कभी कभी ये हम सुनते हैं कि शैतान वादे करता है हमें, तो शैतान खुद तो नहीं आता है वादे करने के लिए, है ना। अगर शैतान ये कह के आए कि भाई मैं शैतान हूँ और तुमसे ये वादा कर रहा हूँ, तो कोई उसका वादा जो है सुनेगा नहीं। तो इसी वजह से कुरान में वो आयत है जिसके अंदर काफ़ी कुछ मुफस्सरीन ने उसके हवाले से गुफ्तगू की है। कुरान की आयत ये है, ला तत्तबिउ खुतुआत शैतान,

0: उसका मतलब ये है कि खुतुआत का मतलब होता है जो कदम बहुत धीरे धीरे धीरे लिए जाते हैं, उसको कहते हैं खुतुआत।
1: जैसे चोर एक घर में अगर एंट्री करता है
0: हाँ
1: तो आहिस्ते
0: बिल्कुल,
1: आहिस्ते कदम रखता है ताकि उसकी आवाज से कोई अवेयर न हो,
0: हाँ, और चोरी भी करके जो
1: चला
0: है
1: जाए।
0: बड़ी चोरी करके चला भी जाए। तो कुरान आके कह रहा है कि इन खुतुआत शैतान के पीछे मत जाओ। तो यहाँ से एक चीज़ जो समझते हैं मुफस्सरीन वो ये है कि शैतान की जो स्ट्रेटजी है, जो रविश है, मेथड है काम करने की, वो ग्रेजुअल है, स्लोली है, स्टेप बाय स्टेप। वो आपको शायद पहले स्टेप में जो है आपको वो हराम काम कहेगा ही नहीं, शायद आपको हलाल काम की तरफ दावत दे या कोई मुस्तहब काम की तरफ दावत दे, ठीक पहला कदम, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मसला होगा। यानी आपको एक ज़रूरी काम छुड़वा रहा है, आपको एक मुस्तहब काम की तरफ बुला रहा है। नमाज शब बहुत अहम है, लेकिन आपको नमाज शब के लिए उठा इसलिए रहा है कि शायद आप जो है आपकी नींद पूरी ना हो और कल आप फैमिली के साथ सही से पेश ना हो। उसको पता है क्योंकि वो आपको देख रहा होता है, जैसे अमीर मोमिनी ने कहा आपके अतराफ में ये लगे हुए हैं।
1: या मिसाल के तौर पर
0: ठीक,
1: नमाज शब के लिए उठे ताकि कल को लोगों फख्र कर सके, लोगों के सामने
0: हाँ, यानी वो
1: कि
0: जानता है
1: मैं
0: कि
1: बहुत
0: हाँ
1: बड़ा
0: ये
1: नमाज शब
0: फख्र कर
1: पढ़ने
0: सकते,
1: वाला हूँ, लोग सोते रहते हैं, मैं ऐसे टाइम
0: बिल्कुल,
1: पे खुदा की इबादत करता हूँ।
0: हाँ, यानी वो उज्ब और अपने आप के
1: एक
0: अंदर बरतरी।
1: स्ट्रैटेजी कि अगर इसी के
0: हाँ
1: अंदर हम ऐड कर लें तो शैतान जो है, आपने कहा कि दो पॉइंट्स यहाँ पर कही, कहा कि एक तो ये कि शैतान ग्रेजुअली आप बहकाता है, इन्हें ऐसा
0: जी
1: नहीं है कि सडनली खुतुआत, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेता है, और दूसरा ये है कि छुप के आता है शैतान, खुल के नहीं आता है। अगर
0: जी
1: खुल के आ जाए तो नेचुरल सी बात है कि कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो शैतान जो है वो दूसरी आयतें कुरान में है कि शैतान अपनी बातों को जीनत देता है, यानी उसको ईविल को, यानी बुरे चीज़ों को एक अच्छा चेहरा बना के भी पेश
0: पेश
1: करता है। तो
0: करता
1: यहाँ पे
0: है।
1: तीन पॉइंट्स हम लोग हैं, तीनों पॉइंट्स को अगर हम लोग एक बार दोबारा एक्सप्लोर कर लें, एक तो ग्रेजुअल
0: जी,
1: शैतान के ट्रैप्स में से हैं कि
0: और
1: वो
0: वादे भी
1: ग्रेजुअल,
0: उसके ग्रेजुअल,
1: हाँ
0: पहले जो वादे होते हैं वो एकदम ऐसे वादे नहीं कि तुम हराम काम करो ताकि फिर तुमको कोई अच्छा फायदा होगा, ना तुम अच्छे काम करो लेकिन वो आपको।
1: हाँ तो एक एक ये कि छुप के करना है, और दूसरा बुरी चीज को, क्योंकि देखिए इंसान को, ये थर्ड वाले पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बुरी चीज को अच्छी बनाकर पेश करना। तो ये दो पॉइंट अगर हमारे लिए और व्यूवर्स के लिए एस्टेब्लिश हो गए कि छुप के आना,
0: जी
1: और इसके अंदर एक मिसाल जो उलमा देते हैं अक्सर के ग्रेजुअल के बारे में, वो ये है कि मिसाल के तौर पर महरम ना महरम रिलेशनशिप्स जो हैं, जो
0: जी
1: एस्टैब्लिश होती हैं, उसके अंदर
0: बिल्कुल,
1: फर्स्ट डे कभी भी जो है इंसान जो है, तो मेरी बहन है, तो मेरा भाई जैसा है, बहन जैसा है, यानी ऐसी बातें जो है इंसान करता है बहुत सारे जगह, ये ट्रैप शैतान क्रिएट करता है। और
0: बिल्कुल,
1: आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते इंसान जो है फाइनली मसलन वहाँ उस पोजीशन पर पहुँच जाता है कि इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये ग्रेजुअल है, और इसके अंदर जो उलमा डिस्कशन में अक्सर बयान करते हैं कि अगर आपने अपने आप को फर्स्ट स्टेप पे नहीं रोका
0: जी
1: तो लास्ट स्टेप पे पहुँचने के बाद आपके लिए तकरीबन जो है वो शैतान के कंट्रोल में जो है, जैसे आयतें हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक हाईवे की मिसाल देते हैं कि आप हाईवे पर अगर ड्राइव कर रहे हैं और आपको मसलन 1 किलोमीटर के बाद लेफ्ट टर्न आने वाला है, और आप मसलन 120 140 की स्पीड पे चला रहे हैं, तो 1 किलोमीटर पहले से आपको कहते हैं लेफ्ट अहेड, फिर आपको जो है मसलन आधे किलोमीटर के बाद कहते हैं, फिर उसके बाद जो है जैसे नज़दीक
0: बिल्कुल,
1: आते रहते हैं आपको कहता रहता है लेफ्ट अहेड, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको लेफ्ट लेना है। लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट तक रुके रहेंगे और कहेंगे नहीं मैं वहां पर पहुंचूंगा फिर डिसाइड करूंगा लेफ्ट अहेड, तो कभी भी लेफ्ट अहेड पे आप लेफ्ट
0: वो
1: टर्न
0: मिस हो
1: लेंगे
0: जाएगा।
1: मिस हो जाएगा। तो यही यानी शैतान का भी तरीकेकार है कि शैतान जो है आपको ट्रैप कर रहा है, वहां पर जहां शैतान ट्रैप कर रहा है वहीं पर खुदा भी आपकी हिदायत भी उसी तरीके से
0: नहीं
1: कर रहा है।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: और इसीलिए उलमा कहते हैं कि जिस तरह से शैतान धीरे धीरे ग्रेजुअली हमको ले जाता है बुराई की तरफ, अच्छाई की तरफ भी अगर जाना हो तो यही शैतानी वाली ट्रिक जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए कि इंसान अच्छाई की तरफ भी ग्रेजुअली जाए। मिसाल के देते हैं, कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी है वो कुरान पढ़ना चाहता है, कुरान पढ़ना चाहता है, और जाहिर है कि वो मजलिस में सुनता है, किसी दर्स में जाता है कि तलावत कुरान करनी चाहिए, और दिल चाहता है उसका तलावत कुरान करे, और वो अगले दिन बैठता है और आधा घंटा कुरान की तलावत करता है, और फिर दो दिन 3 दिन ये काम कर लेता है, फिर 14 दिन से वो चीज़ छूट जाती है।
2: उलमा कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, अच्छाई की तरफ भी जाना हो तो ग्रेजुअली जाए, पहले मिसाल के तौर पर हाफ

0: पढ़ें, एक पेज पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें, फिर इसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। नहीं कि पहले दिन आधा घंटा एक घंटा पढ़ लिया और चौथे दिन जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए।
1: तो यहाँ पर एक बात, ग्रेजुअल वाली बात हमने कंप्लीट कर ली कि शैतान ग्रेजुअली आपको बहकाता है। मैंने एक मिसाल जो जनरली जवानों के दरमियान दी जाती है और शायद बेहतर है कि वो दी जाए, कि मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में एक आदमी है, वो मसलन एक शहर से हिंदुस्तान में है और शिया थे, मज़हबी थे, दीनदार थे, लेकिन फाइनली एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच गए कि वो खुदा को, रसूल को और अहले बैत को गालियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं।
0: माज़ाल्लाह जी।
1: लेकिन अगर इनकी जवानी में कोई इनको हाथ पकड़ के कहता कि जब इमाम हुसैन के लिए रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे, मजलिस पढ़ रहे थे, मजलिस सॉरी मजलिस सुन रहे थे, आज़ादारी कर रहे थे, अगर उस ज़माने में कोई इनका हाथ पकड़ के कहता कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम उस पोजीशन पर पहुंच जाओगे कि रसूल और अहले बैत को तुम बुरा कहोगे, तो तुमसे लड़ लेता।
0: बिल्कुल
1: लेकिन वो स्टेप बाई स्टेप, स्टेप बाई स्टेप, स्टेप बाई स्टेप शैतान वहां पहुंचा देता है कि इंसान वहां पहुंचने के बाद वो ग्रेजुअली अपने आप को सिर्फ लास्ट पोजीशन से ही कंपेयर करता है, अपनी स्टार्ट से वो कंपेयर नहीं कर
0: नहीं,
1: पाता। तो ये हमारे लिए, खुद हम तालिब इल्मों के लिए, खुद हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेजुअली अपने आप को हमेशा अलर्ट रहें, शैतान के वसवसों से अलर्ट रहें, और अपने आप को हमेशा मुराकबत की स्टेज पे लेके जाएं, अपने आप से हमेशा अपने आप से सवाल करें। दूसरा, ये छुपे हुए शैतान के बारे में है कि शैतान छुप के आता है, स्ट्रैटेजीज उसकी ये होती है कि वो कभी दिख के नहीं आएगा, वो छुप के आएगा, अच्छे बातों को इस तरीके से पेश करेगा। मिसाल के तौर पर उलमा को, मसलन एक जवान है जो आज नौजुबिल्ला मरजे तकलीद को या रहबर मुअज्जम को बुरा भला कह रहा है, गालियां दे रहा है, लेकिन वो इस पोजीशन पर कहाँ से पहुंचा? शैतान ने उसके लिए छुप के काम किया, वो
0: बिल्कुल
1: दीन के नाम पर उसको दीन के खिलाफ बहका रहा है। तो ये अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि शैतान जो है वो हमें गफलत में ना डाल दे, कि हम लोग उस पोजीशन पर आ जाएं। हाँ
0: आपने ये जो बात की कि बाज़ लोग होते हैं वो धीरे धीरे वो अहले बैत के भी मुकाबले में आ जाते हैं। तारीख़ में इसकी बाज़ बहुत ही दिलचस्प मिसालें हैं कि बाज़ अफराद हैं कि जो आइम्मा के साथ रहे हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा आया कि वो आइम्मा के मुकाबले में आकर खड़े हो गए। और उनमें जो बहुत ही वाज़े मिसाल है वो शिम्र की मिसाल है कि
1: जी
0: शिम्र जंगे सिफीन में मौलाए कायनात के साथ उसने जंग लड़ी है, वहाँ पर ज़ख्मी हुआ है। यानी आप देखें कितनी बड़ी बात है कि कोई इमाम मासूम के साथ में मौलाए कायनात की रकाब में जंग करे और वहाँ पर ज़ख्मी भी हो। यानी गोया वो अपने आप को पेश कर चुका था शहीद करने के लिए, लेकिन फिर वो कैसे जो है वो दूर होता है, दूर होता है, यहाँ तक के वाक़े करबला में, मैदान करबला में इमाम हुसैन के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और आपको वो शहीद करता है। तो कहाँ वो मौलाए कायनात के साथ में होना और कि कहाँ फिर ग्रेजुअली उसका दूर होना यहाँ तक कि खुद अपने ज़माने के इमाम के सामने
1: इन्हें
0: आ जाए।
1: दोनों
0: जी
1: पॉसिबिलिटीज़ का होना है कि इंसान जो है वो आज आज सही हो, लेकिन शैतान ट्रैप करते करते करते करते करते उसको फाइनली एक ऐसी जगह ले जाएगा, जैसे स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है तो झूठे वादों की बात हो रही है, नेचुरल सी बात है कि मसलन जा की, यानी कोई पोजीशन और पावर की तड़प किसी के अंदर हो तो शैतान उसे एक्सप्लॉइट करेगा कि तुझे ये करेगा तो ये पोजीशन मिलेगी, ये पावर मिलेगा, ये पोजीशन
0: बिल्कुल
1: पावर, आहिस्ते आहिस्ते उसको इतना एक्सप्लोर करेगा वो, कि वो इतना उसको भड़काएगा कि फाइनली वो इंसान जो है वो पावर और पोजीशन के लिए हर चीज़ के मुकाबले पे खड़ा होने तैयार हो जाए, चाहे खुदा और रसूल भी क्यों ना हो। तो
0: जी
1: ये एक
0: बिल्कुल
1: ग्रेजुअल जो इंसान के अंदर, और खुसूसन हम सबको, यानी जवानों को, हम सबको इससे खबरदार रहना चाहिए।
0: नहीं,
1: तो
0: यहाँ पे एक अहम नुक्ता शायद है कि शायद किसी के ज़हन में ये सवाल आए कि बहरहाल इन इंसान को कमाबेश पता होता है कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, और जो वो पहला, हत्ता वो पहला कदम जब उठा रहा होता है तो उसको इस बात की भनक होती है कि यहाँ पर कुछ मसला ज़रूर है। बहरहाल उसने एक कदम उठा लिया और फिर इसी तरह से वो दूसरा भी कदम उठाता है, तीसरा भी उठाता है। तो यहाँ पर एक सवाल होता है कि बहरहाल वो ऐसा क्यों कर रहा है, यानी क्या वो, कहाँ मुश्किल कहाँ है, वो जड़ कहाँ है मुश्किल की, कि वो दूसरा भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है, तीसरा भी, और इसी तरह से वो कदम उठाना शुरू कर देता है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान की जाती है। दो अहम बातें यहाँ पे जो बयान की जाती है वो ये कि एक तो जब इंसान वो पहला कदम उठाता है तो उसे मज़ा आता है, मज़ा आता है यानी वो लज्जत उसे हासिल होती है। बहरहाल उसने वो कदम उठाया और जो वादा था शैतान का कि तुम्हें दुनिया की कोई लज्जत तुम्हें मिल जाएगी, कोई फ़ायदा मिले, वक्ती तौर पे।

0: फायदा हो भी जाता है, और धीरे धीरे इंसान उस लज्जत का आदी बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आँखों के जो गुनाह हैं, उसमें शैतान इस तरह से आके बहकाता है कि बहरहाल अब तौबा कर लेना, बहरहाल अब इतना अच्छा नज़ारा है देख लो फिलहाल, बाद में जो है, लेकिन वो जो मज़ा उसे आ गया, या दूसरी जो इस तरह की लज्जात हैं, एक बार जब इंसान ये हराम मज़ा चख लेता है, उसके वजूद में जब आ जाता है, तो फिर दूसरा स्टेप जो है वो निस्बतन उठाना उसके लिए, क्योंकि एक बार जुरात कर चुका है। तो ये एक अहम वजह है कि इंसान को वो लज्जत,
1: सिगरेट की अगर मिसाल दें
0: जी
1: तो उसी इसी तरीके
0: बिल्कुल,
1: से
0: जैसे वो जो है वो एडिक्ट हो जाता है जी,
1: पहली बार वो जानता है उसकी फितरत के लिए, उसकी नफ्स के लिए, उसकी बॉडी के लिए ये
0: नुकसान है
1: हार्मफुल
0: थोड़ा
1: है,
0: जी
1: पहली बार पीता है तो उसे खांसी भी आती है, क्योंकि आपने कहा कि उसे वो लज्जत होती है, लेकिन पहली बार जब इंसान करता है तो उसकी नफ्स के अंदर मलामत भी होती है, यानी
0: बिल्कुल
1: नफ्स जो है
0: बिल्कुल
1: उसको उसको सिगरेट का मज़ा तो ले रही है लेकिन साथ में खास भी रही है,
0: बिल्कुल,
1: बता रही है कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस।
0: और वो पैर रख देता है नफ्स पे
1: हाँ, और यहीं पर जो है वो अब दो चैलेंज है,
0: जी
1: वो लज्जत जो गुनाह की है वो ज्यादा शदीद है या नफ्स के अंदर जो मलामत हो रही है वो ज्यादा शदीद है, तो यहीं पर तौबा का रोल और यहीं पर जो है जिहाद बिन नफ्स का रोल है जो आता है कि यहाँ पर इंसान जो है
0: जी
1: उस क्लैश के अंदर आया वो जीत पाता है या हार पाता
0: जी तो
1: है।
0: यहाँ पे वो एक दूसरा नुक्ता जिसकी
1: जी
0: तरफ मैं आना चाह रहा था, कि एक तो ये कि वो लज्जत की आदत करने लगता है,
1: जी
0: और दूसरा जो नुक्ता जो बयान होता है वो ये है कि इंसान के कुछ बिलीफ्स होते हैं, हर इंसान हत्ता वो खुदा को नहीं भी मानता है तो उसका एक बिलीफ सिस्टम होता है, वो
1: जी
0: कुछ चीज़ों को
1: वैल्यू
0: अच्छा
1: सिस्टम्स
0: समझता
1: होते
0: है, एक
1: हैं।
0: वैल्यू सिस्टम उसका होता है बहरहाल। तो मखसूसन मुसलमान और जो मोमिनीन है उनका भी एक बिलीफ सिस्टम होता है, वो खुदा को मानते हैं जो है, रसूल को मानते हैं, और मुख्तलिफ जो हमारे बिलीफ्स है कि एक आखिरत आने वाली है और ये सारी चीज़ें। यहाँ पर कुरान में आयत है सराहत से, बस उसका माना मैं यहाँ
1: जी
0: पे कर दूँ, कि कुरान ने आके कहा कि शैतान को, यानी खुदा शैतान को भेजने का फ़लसफ़ा बता रहा है कि हमने शैतान को क्यों भेजा। खुदा कहता है कि हमने शैतान को भेजा ताकि वो बहकाए, ताकि मुझे पता चले कि इनमें से ईमान वाले कौन हैं और इनमें से वो लोग जिनके दिल में शक है वो कौन है, यानी जिन लोगों के दिलों में खुदा और वो जो बिलीफ सिस्टम है उसको लेके शक पाया जाता है, वो बहुत जल्दी जो है आप समझ ले वल्नरेबल हो जाते हैं शैतान के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए हर चीज़ जो है आपने सुना होगा कि कल किसने देखा है, मरने के बाद किसने देखा है, हाँ ये वहीं से आ रहा है, वो जो शक का शायबा जो उसके वजूद में है, और ये जो बायस बनता है कि शैतान आए आपके सामने दौड़ता हुआ कि ये मेरा टारगेट बेहतरीन टारगेट है। तो
1: कहते हैं
0: कोशिश ये
1: कि
0: हो जी, आखिरी नुक्ता जी
1: जी, मैं इसको आपकी पॉइंट को ऐड करता हूँ फिर आप।
0: जी
1: कहते हैं कि जो जो होगा वो देखा जाएगा,
0: हाँ जो होगा
1: लेकिन
0: देखा
1: मुश्किल ये है
0: जाएगा
1: कि जो होगा वो रोज़े कयामत देखा नहीं जाएगा,
0: जी, वो जो है
1: सख्त होगा।
0: सख्त होगा, इंसान
1: जी
0: उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा बहरहाल, और वहाँ पे बर्दाश्त का मादा
1: जी
0: होगा नहीं। तो यहाँ से एक बात जो समझ में आती है वो ये कि अगर शैतान से, शैतान के हरबों से बचना है तो हम आए अपने बिलीफ सिस्टम को, जो हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको दलील के बिना पर एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर आपके पास दलील है किसी चीज़ की तो निस्बतन जो है आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, निस्बतन आपका यकीन ज़्यादा होता है, इत्मीनान ज़्यादा होता है, और जब वो चीज़ आपके सामने आती है कि बस ये कदम तुमको उठाना है, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, फौरन वो जो यकीन आपका खुदा पे है आखिरत पे है, इंसान थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाता है, वो इतना जल्दी उसके पीछे नहीं जाता। तो ये हमारे अकायद कभी कभी कच्चे रह जाते हैं
1: ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको एक जगह मैंने डिस्कशन में सुना था कि ये कहा जाता है हमारे यहाँ कि हमारा अकीदा अच्छा है लेकिन अमल अच्छा नहीं है, यानी हमारी कौम का अकीदा अच्छा है लेकिन
0: जी
1: अमल अच्छा नहीं है। लेकिन
0: जी
1: आपकी जो बात है उससे जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि एक्चुअली हमारा अमल अच्छा नहीं है क्योंकि हमारा अकीदा
0: अकीदा
1: अच्छा नहीं है,
0: बिल्कुल सही कहा
1: क्योंकि
0: आपने
1: अगर अकीदा अच्छा होगा तो नेचुरली अमल भी अच्छा होगा। क्यों?
0: जी
1: मसलन एक नामहरम अगर एक किसी को अप्रोच कर रही है, ठीक है, और ये इंसान ये बात में बिलीव करता है कि मासूमीन ने तुमसे कहा है कि अगर तुम नामहरम के साथ रिलेशन रखोगे तो तुम्हारी आइंदा नस्लों में उसका नेगेटिव असर तुम देखोगे, अगर इस बात पे उसका अकीदा है, इस बात पे उसका ईमान है,
0: यकीन है उसको,
1: यकीन है,
0: और दलील
1: तो
0: के बिना पर है तो वो नहीं जाएगा
1: हाँ नेचुरल सी बात है कि अगर वो आगे बढ़ रहा है एक जवान, या मसलन आगे बढ़ रहा है एक

0: लड़की आगे बढ़ रही है तो उसके लिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसका सिर्फ ईमान, उसका सिर्फ अमल कमज़ोर है, प्रॉब्लम ये है कि
1: बिल्कुल
0: वो अल्लाह के वादों के ऊपर, रसूल के वादों के ऊपर, अहले बैत के वादों के ऊपर ईमान कमज़ोर है, जिसकी वजह से अमल कमज़ोर हो रहा है। तो यहाँ पर जो है शैतान के मुकाबले में और अहले बैत और खुदा रसूल और अहले बैत की के लिए हमें ईमान को मजबूत करना होगा ताकि हम मुकाबला उससे आसानी से कर लें। मसलन रिवायतों में ये भी है कि मसलन उलमा कहते हैं कि मसलन मासूम क्यों गुनाह नहीं करते थे, तो कहते हैं कि मसलन जब उसको कंपेयर करते हैं, जी आप अगर एक्सप्लेन करें कि उसको कंपैरिजन करते हैं मासूम के, वो गुनाह की शिद्दत और
1: क्योंकि चूंकि मासूम उस चीज़ को देख रहा है, गुनाह की बुराई को, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहते हैं कि अगर एक आदमी के सामने गंदा पानी हो, क्या कितनी भी प्यास लगी हो, क्या वो उसे पीना चाहेगा? नहीं पीना चाहेगा वो उसे, क्यों? क्योंकि पानी गंदा है, उसे पता है, वो अपनी आँखों से देख रहा है। तो ऐसे ही जो गुनाह की बुराई है उसको मासूम अपनी आँखों से वैसे ही देख रहा होता है। जैसे कि कुरान मजीद में है कि अगर कोई हराम माल खा रहा है तो जैसे अपने अपने शिकम के अंदर आग को भर रहा है वो, तो एक मासूम की आँख गोया इसे देख रही होती है कि वो जो है वाकई में आग की जो है वो सूरत है। तो
2: और वो
1: वो
2: मासूम हमें बताता है कि भाई ये गुनाह की गंदगी जो है वो इस तरह की है और हकीकत में इसमें गंदगी पाई जाती है।
0: हाँ, यहीं पर एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है वसवासिल खन्नास जो है खुदा ने कुरान में कहा है कि वसवसा एक स्ट्रेटजी है, एक ट्रैप है शैतान का। तो इसको थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दें कि भाई शैतान का वजूद जो है, हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है उसकी आर्मी है, तो क्या प्रोसेस है, कैसे शैतान कम्युनिकेट करता है, वसवसा कैसे करता है? मिनल जिन वल इंस, दोनों दोनों से जो है शैतान वसवसों की गुफ्तगू है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वसवसा क्या है, वसवसा कैसे होता है, और फिर उसके बाद चीज़ों को आगे लेके चले।
2: जी, बहुत अच्छा नुक्ता ये जो वसवसा के हवाले से गुफ्तगू आपने जो की कि कुरान में भी जिक्र है कि शैतान या खन्नास जो है, क्योंकि शैतान का एक नाम खन्नास है, क्यों? क्योंकि वो वसवसा करते हैं।
0: हाँ, तो ये भी एक क्लियर कर दें व्यूअर्स के लिए कि हम लोग ने इबलीस की गुफ्तगू कर ली है, शैतान की गुफ्तगू कर ली है, अभी खन्नास की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो
2: जी,
0: खन्नास क्या है?
2: खन्नास इसलिए कहते हैं कि वसवसा करता है,
0: यानी शैतान ही है जिसका एक नाम खन्नास है।
2: खन्नास है।
0: जी
2: जी, आपने वसवसे की बात कही कि शैतान को नस्बत दी गई है कि शैतान जो है वो वसवसा करता है, और उसका एक और नाम इसी वजह से कुरान ने खन्नास रखा है। खन्नास होता वो है जो आपके जो है नज़दीक आके आपके कान में नजवा करता है, कुछ चीज़ें आपके कान में कहता है। आपने देखा होगा कभी कभी एक जम में आप बैठें, दो लोग एक दूसरे के कान में खुसर पुसर कर रहे होते हैं और पूरी मजलिस जो है उसकी वजह से ख़राब हो जाती है, आपने देखा होगा। तो खन्नास का काम यही होता है कि वो वसवसा करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रुक के हमको समझने की ज़रूरत है कि वसवसा होता क्या है। तो उलमा जो बयान करते हैं वसवसे के हवाले से, वसवसा देखें इंसान के वजूद के ऊपर सल्तनत नहीं है शैतान को,
0: ये हमने डिस्कस कर लिया।
2: जी यानी वो उसके दिल में नहीं वारिद हो सकता, लेकिन शैतान को एक कुदरत जो खुदा ने दी है कि अलबत्त कुछ ख़ास लोगों को छोड़ के, जो मुखलसीन का जिक्र हुआ है जिसमें अंबिया और ख़ास जो खुदा के बंदे हैं उनको छोड़ के,
0: मासूमीन
2: आम जो लोग हैं उनके जहन में मफाहिम डाल सकता है, कॉन्सेप्ट्स डाल सकता है, ये शैतान का काम है। यानी जो शयातीन है इनसे वो उनके पास तो जो है ये मफाहिम डालने के लिए अवज़ार होते हैं, जैसे आज का सोशल मीडिया है जो अगर कुफ्फार के हाथ में है और दुश्मन खुदा के हाथ में, तो उसका काम ही ये होता है कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में जहन में डालें, और फिर वो इंसान के इख्तियार पे होता है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स को दिल में उतारने, कौन से को नहीं उतार रहे, यहाँ पे फ्री विल आता है। लेकिन जो शयातीन जिन होते हैं उनके पास ये कुदरत होती है कि वो आपके जहन में मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स को डालते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ करें कि एक जगह आपको दावत हुई है और आपके जो है दोस्त को दावत नहीं हुई है, जो शयातीन ने जिन है जो वसवसा करता है वो आपके जहन में सिर्फ ये ख्याल डाल देता है कि आपकी वैल्यू ज़्यादा है, बस ये कॉन्सेप्ट उसने डाल दिया, बस ये जो है बाकायदा उसने आपके जहन में इसको गुनगुनाया, चूँकि रवायत में हमें मिलता है कि वो आता है

0: आपके साथ नजवा करता है, नजवा यानी वो गुफ्तगु जो धीरे से होती है, है ना। बस ये कॉन्सेप्ट उसने डाल दिया, अब आपकी जिम्मेदारी यानी आपके जिम्मे है कि आप इस कॉन्सेप्ट को पकाएं और अपने आप को बुरा लगाएं और अपने दिल में होता है या उसको इग्नोर करें। तो देखें वसवसा कुछ ऐसी चीज है कि इंसान के जहन में कुछ चीजों को कॉन्सेप्ट को ईजाद करता
1: लेकिन
0: है।
1: यहीं पर खुदा ने जो है एक कॉन्सेप्ट जो हमारे वहाँ इल्हाम का भी है और वसवसे का भी है,
0: बिल्कुल।
1: और खुदा जो है ये एक कैसे एक इंसान आइडेंटिफाई करे कि मिसाल के तौर पर जो चीज़ एक देखें, जैसे आपने कहा कि मसलन तकब्बुर है, ठीक है ना, तकब्बुर तो क्लियर है कि इंसान के अंदर जब भी ये एहसास हो कि मेरे अंदर तकब्बुर आ रहा है, मैं किसी से बड़ा हूँ, मेरी वैल्यू ज़्यादा है, मैं दूसरों से अफजल हूँ, तो वह शैतान की तरफ से है। लेकिन कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में जो थॉट्स आ रहे होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते हैं, इंसान जज नहीं कर पाता कि ये इल्हाम है या वसवसा है। तो कैसे इंसान इसको आइडेंटिफाई करे कि इल्हाम है कि वसवसा है?
2: देखिए, हमारे पास जितना दीनी मालूमात होंगी उतना बेहतर हम ये जज कर सकेंगे कि जो ख्याल हमें आ रहा है वो रहमानी है या शैतानी है, वो खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। एक काम की का ख्याल आया कि फ़लाँ काम की तरफ जाओ, फ़लाँ काम करो, मुझे अगर नहीं पता है, मैंने अगर इस बात को नहीं सीखा कि वो काम हलाल है या हराम है, तो ज़ाहिर है कि मैं तय नहीं कर सकूँगा और मैं इस हराम रास्ते के ऊपर चल पड़ूंगा। तो पहली चीज़ जो है वो ये कि हमें दीनी मालूमात हमें होनी चाहिए। हम मजालिस में, खुतबात जुमा में, दूसरे मौक़ों पर जो कुछ सुनते हैं उसे हम थोड़ा गौर से सुने और समझने की कोशिश करें, उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। तो एक रास्ता ये है कि ये देखने का कि हमारे पास में दीनी मालूमात जितनी आएंगी हम ये तय कर सकेंगे। कुछ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिसे कहें कि हमने सुन रखा है, हमें बस अप्लाई करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर वो रवायत में है कि शैतान कहता है कि अगर कोई चंद काम ऐसे हैं कि अगर कोई आदमी उन कामों को अंजाम दे फिर मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, फिर वो कुछ भी नेक काम करता रहे वो गोया मेरा अपना ही होकर के रहेगा। मैं आपके सामने वो रवायत ले आऊं कि जिसमें वो कहता है कि जी तीन ऐसी चीज़ें हैं कि अगर उसके अंदर हो तो लम उबाल मा अमिला फ़इन्नहु गैर मकबूल। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो फिर जो कुछ भी वो करेगा उसका कबूल होने वाला नहीं है। वो कितनी नमाज पढ़े, कितने रोज़े रखे, कितना वो सदका दे, कितने नेक काम जो है वो में पैसा खर्च करे, वो क्या है, इज़्ज़त तक सरा अमल हो, अगर अपने काम को वो ज़्यादा समझे। फिर ये एक क्राइटेरिया ये हो सकता है
0: कि वो अपने काम को बिल्कुल बड़ा ज़्यादा,
2: एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि हम कैसे समझें कि हम ये जो ख्याल आ रहा है ये रहमानी है या शैतानी है, कि अगर हम अपने किए हुए काम को ज़्यादा समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया कि इतने सारे लोगों की मदद कर दी, हमने फलां जगह इतना जो है वो तबरुक तकसीम कर दिया, हमने नमाजें इतनी ज़्यादा।
1: ये सब करने के बाद हमारे जहन में दो चीज़ आ सकती है कि खुदाया मैंने तेरे लिए ये किया हूँ, तूने कबूल किया या नहीं मुझे नहीं पता, और खुदाया तू कबूल कर ले क्योंकि तेरी अगर तूने कबूल नहीं किया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी एक इंसान के अंदर इनकसारी आती है,
0: बिल्कुल।
1: और एक दूसरा ये है कि मेरे से कोई बड़ा नहीं है, मेरे जैसा कोई करता नहीं है, मैं अकेला हूँ जो ऐसा करता हूँ, यानी इंसान के अंदर। तो ये नेचुरल सी बात है कि जो वो इंसान खुद अपने अंदर जो सहनी में कॉन्सेप्ट आ रहे हैं अगर वो खुद ही उसको खोलेगा, उसी को खुद एक्सप्लोर करेगा, तो उसको खुद नतीजा मिल जाएगा कि ये मुझे खुदा के सामने ज़्यादा मुतवाज़े कर रहे हैं या शैतान के सामने मुझे ज़्यादा मुतवाज़े कर रहे हैं।
2: जी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है वह नसिया जम्बहु, अगर कोई आदमी अपने गुनाह को भूल जाए। बहुत सारे लोग होते हैं, आप उनसे बात करें जैसे कि मसलन किसी बीमारी में है और नहीं ठीक हो रही है या मुश्किलात आ गई हैं, कहते हैं कि खुदा ने पता नहीं क्यों मेरे साथ जो है वो ये मुश्किल खड़ी कर दी है, मैंने तो कभी ज़िंदगी में कोई गुनाह ही नहीं किया है। सही। तो क्या है कि ये सोचना कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, अपने गुनाह को जो है वो भूल जाना, कहा अगर कोई गुनाह को भूल जाए तो फिर शैतान कहता है कि ठीक है अब ये जो भी नेक काम करे।
1: इसका एक माना ये भी लिया जा सकता है कि गुनाह को अभी फिलहाल वो इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, गुनाह है या नहीं है।
0: ऐसे गुनाह ज़ाहिरन मंजूर ही है कि जिसकी तौबा उसने नहीं की और जिसके बनिस्बत असल भूल गया है, वो करके भूल गया, या कुछ लोग होते कहते किया तो किया बहुत पहले था, हाँ उसके बनिस्बत कोई पशेमानी नहीं है,
2: इम्पोर्टेंस उसकी नज़र में नहीं है कि उसने खुदा की मासियत की थी। और तीसरी चीज़ है वह दखलहुल उजब, और अगर कोई आदमी है कि जिसके अंदर उजब और ख़ुद पसंदी आ जाए कि वो ये समझे बस मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे अलावा जितने लोग हैं सबकी कोई हैसियत और अहमियत
1: नहीं, मेरे जैसी कोई नमाज नहीं पढ़ता, मेरे जैसा कोई नौहा नहीं पढ़ता, मेरे जैसी कोई मजलिस नहीं पढ़ता, मेरे जैसी कोई दुआ नहीं करता, मेरे जैसे, वो खुद के अमल को इतना पसंद करे कि वो उसको ये लगे कि मुझ जैसा कोई नहीं है, मुझ जैसा कोई मुखलिस नहीं है, मुझ जैसा कोई मदद। तो अगर इंसान की एक्चुअल नीयत तब्दील हो जाती है फिर इंसान नेक अमल करे तो क्या उसका
2: कोई नतीजा नहीं मिलता। और वो कहता है वो है कि गैर
0: कॉन्फिडेंट हो जाता है,
2: जी कॉन्फिडेंट हो जाता है। लिहाजा अगर ऐसे ख्यालात आए तो ये रवायात में है कि वाज़ह तौर से समझे कि नहीं ये तो रहमानी ख्याल नहीं हो सकता, यकीनन शैतानी ही ख्याल है।
1: तो जो जहन में सवालात आ रहे हैं ना, तो मिसाल के तौर पर मुझे मसलन ज़ालिमों से मुकाबला करना चाहिए, मुझे खामोश नहीं रहना चाहिए, अगर ये आ रहे तो नेचुरली ये इलाही वो हैं, यानी इंसान के लिए वो खुदा ने फितरत में भी रखा है। लेकिन इल्हाम का जो कॉन्सेप्ट है वो कुरान की आयत के हिसाब से दोनों हैं।
0: बिल्कुल
1: जी, अगर आप बयान कर दें।
0: इल्हाम एक उसका आम माना है कि हत्ता जानवरों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जानवर जो खुद साख्ता तौर पे कुछ काम करते, चूंटी जो है वो दाने की तरफ जाती है मिसाल के तौर पर, और जो गरीजे होते हैं उसके लिए भी इल्हाम इस्तेमाल किया गया है। या मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे शैतानी इल्हामात के लिए भी जो है कुरान ने रिवायात ने इल्हाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो वसवसे जो शैतानी वसवसे
1: कुरान में इस्तेमाल किया गया,
0: अल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, यानी फुजूर के लिए भी, यानी बुरे जो बुरी चीज़ें हैं उनके लिए भी इल्हाम इस्तेमाल होता है। लेकिन वसवसा जो है वो ख़ास जो मखसूस है बुरे उनवान से, यानी उसका एक मनफी कॉनोटेशन है, यूँ समझ लें आप।
1: जी, तो यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट को समझा कि जैसे कि आपने कहा कि वसवसा जो है वो वही चीज़ है कि जो जहन में ईजाद किया जाता है। आपने कहा कि जिस तरीके से कभी कभी शैतान खुद आके कान में नजवा करता है, या कुछ उलमा इसको इस तरीके से भी डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मिसाल के तौर पर आज मीडिया की दुनिया के अंदर, और ये मीडिया में जो आप चीज़ देख रहे हैं तो ये भी या तो रहमान की तरफ से या शैतान की तरफ से, ये दोनों चीज़ों को ईजाद करता है, या तो आपको वसवसा क्रिएट करता है या आपको जो है अल्लाह की तरफ से हिदायत जो है वो प्रोवाइड करता है। यहीं पर रहबर मौज़म की एक और बात थी जो मैं मुतालिया कर रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि हम जब शैतान का तसव्वुर करते हैं तो सिर्फ ये नहीं सोचें शैतान को ये गुमशुदा चीज़ है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन लोगों ने मकसद उनका ये है कि पूरी इंसान को और पूरी इंसानियत को उसके इलाही मकसद से हटा देना, जो मकसद से अल्लाह ने खल्क किया था, और जो शैतान ने एग्जैक्टली कहा था कि भाई मैं ये मेरा काम है, मैंने कसम खाया हूँ कि मैं इंसानों को गुमराह करूँगा, ये बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी ये कसम खाई है कि हम जो है इंसानों को गुमराह करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही शैतान है बल्कि ये भी शैतान है,
0: शयातीन और इसके लश्कर, और हर जगह आपको इसका लश्कर।
1: तो ये क्लैरिटी होना चाहिए,
2: इसलिए कुरान ने इसको एक, यानी जो शैतान का कॉन्सेप्ट है, शायद बहुत सारी जगहों पर ये हो कि एक छुपी हुई चीज़ है, पर्सनली इंसान को परेशान करता है, नहीं बल्कि शैतान ने इसको एक पूरी तारीखी जो है वो हक और बातिल की जंग के तौर पर पेश किया है। जैसे कि वो सूरह अनआम की आयत है, आयत नंबर 112, कि वजअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुवन शयातीनल इंस वल जिन, कि हमने हर नबी के लिए जो है वो दुश्मन की सूरत में शैतान जो है वो करार दिया है, कि नबी का एक दुश्मन होगा शैतान होगा, वो इंसानों में से हो सकते हैं और वो वही छुपी हुई मखलूक भी।
0: यूं समझ लें कि खुदावंद मुताल ने इस दुनिया में दो महाज कायम किए हैं, महाज हक जो है उसको जो संभाल रहे हैं वो अंबिया और उनके दोस्त हैं उनको मानने वाले हैं, और दूसरे मुकाबले उसके मुकाबले में जो बातिल है उस महाज पे जो है शयातीन जिन और इंस, यानी ये पूरा लश्कर इस महाज को संभाले हुए।
1: जब हम लोग कहते हैं अमरीका शैतान बुजुर्ग है, इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला ने कहा अमरीका शैतान बुजुर्ग है, तो इसी कॉन्सेप्ट के अंदर है कि दुनिया में कुछ कौमों ने खुद डिसाइड किया है कि हम शैतान का रोल प्ले करेंगे
0: जी,
1: हम यजीद का रोल प्ले करेंगे, हम बच्चों का कत्ल करेंगे, हम जो हैं जुल्म करेंगे। और वो उन्होंने चाहे वो ना कहें, चाहे वो अपनी जबान से कहें कि हम खुदा को मानते हैं, लेकिन हकीकत में जैसे कुरान मजीद में है कि वो जब उनसे पूछा जाएगा क्यों कत्लो आम कर रहे हो तो कहते नहीं हम तो इस्लाह करना चाहते हैं। तो चाहे जबान से वो इस्लाह की बात कर रहे हो लेकिन ये जुनूद शैतान है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब हम लोग शैतान की बात करते हैं तो इन लोगों को भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये शैतान की आर्मी है,

0: यहीं पर जवान के लिए एक इंस्पिरेशन होता है कि हमें खुदा की आर्मी बननी है,
1: बिल्कुल,
0: यानी कि इन्हीं शैतान के मुकाबले में एक खुदा की आर्मी है, और जो खुदा की आर्मी, ये तो इन्होंने डिसाइड किया है कि हम शैतान की आर्मी है, और हमने खुल के डिसाइड किया है कि हम जो हैं इस्लाम की मुखालिफत, कुरान की मुखालिफत, रसूल की मुखालिफत, दीन की मुखालिफत, दीन के अकदार की मुखालिफत, दीन की जो आज मसलन मराज तकलीद आयतुल्ला सिस्तानी, आयतुल्ला खामेनाई, इनको ये वही जैसे आपने कहा दो महाज, महाज हक है, इनके मुकाबले पे जो शैतान है, अगर हम उस शैतान को जो कान में वसवसा कर रहा है उस पर ध्यान दें, लेकिन ये फेसबुक और मेटा और ये पूरी दुनिया की जो कंपनीज हैं, जिस तरीके से इन लोग ये शैतानत कर रहे हैं, इनको हम लोग
1: नज़रअंदाज करें। बिल्कुल,
2: ये हक और बातिल की जंग में बहकाने का एक तरीका तो शैतान का ये होता है कि वो कभी कभी हक के बिल्कुल मुकाबले में ले आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को कहता है अपने तौर पर कि न्यूट्रल रहो, यानी कुछ लोग कहते हैं ना हमें जालिम से मतलब है, ना मजलूम से मतलब है, ना हमें हक से मतलब है, ना बातिल से मतलब है, हमें ना इसराइल से मतलब है, ना फिलिस्तीन से मतलब है। नहीं, बाज़ लोग इस तरह की बात करते हैं, तारीखी तौर पर भी बाज़ अफराद ऐसे रहे, और मौलाए कायनात के दौर में एक फ़र्द है कि जिससे आपने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर कोई हक और बातिल की जंग में आकर के, कुफ्र और ईमान की जंग में आकर के ये कहे कि मैं ना इनकी तरफ हूँ ना उनकी तरफ हूँ, तो ये वाज़े तौर पर शैतान की जो है वो आवाज़ है। आप एक मशहूर तारीखी शख्सियत है हसन बसरी, वो एक जगह पर शायद पानी जो है वो पी रहे थे या पानी वज़ू कर रहे थे, और मिसाल तौर पर नहर में, चूँकि नहर थी उससे वज़ू कर रहे हैं या पानी पी रहे हैं, जो पानी बचता है उसे ऐसे ही बजाय उसके कि नहर में फेंकें उसे मिट्टी पर फेंक देते हैं, तो मौला कहना कहते हैं कि तुमने पानी का जो है वो इसराफ़ किया है और ये पानी तुम्हें नहर में फेंकना चाहिए था। तो देखिए वो पलट, मौला कहना उस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन है, तमाम मुसलमानों ने वाज़े तौर पर ज़ाहिर तौर पर आपको अपना खलीफा तस्लीम किया है, जंग सिफिन वगैरह हो चुकी है, और वो आदमी वहाँ पर आकर के तौहीन करता है और कहता है, जसारत करता है और कहता है मौला कहना से कि आप मुझे पानी के इसराफ करने पर जो है वो टोक रहे हैं, आपने मुसलमानों के खून का खून इतना बहाया है और उसका इतना इसराफ किया है, उसका कौन हिसाब देगा, वो भी तो कितनी बड़ी गलती है। तो मौला कायनात उससे कहते हैं कि अच्छा, यानी तुम ये कह रहे हो कि मैं बातिल पर था और मैंने गलती की जो मुसलमानों का जो है वो जंग सिफीन लड़ी, जंग जमल लड़ी, तो अगर ठीक है मैं अगर गलती पर था तो मेरे मुकाबले में जो लोग थे तुम्हें उनका साथ देना चाहिए था, उनके मुकाबले में आ जाते। तो वो कहता है कि नहीं, हाँ मैं देना चाहता था उनका साथ, लेकिन जब मैं अपने घर से निकला तो एक आवाज़ आई कि कातिल और मकतूल, ये जो जंग होने जा रही है इसमें कातिल और मकतूल जो है वो दोनों जहन्नम में है। तो मौला कहना कहते हैं कि हाँ वो तुम्हारे भाई शैतान की आवाज़ थी।
1: तो देखें इस तरह से, यानी इंडिविजुअल से शुरू होता है
0: जी,
1: लेकिन इंतहा देखे, यानी यू एंड अप बीइंग किसमें, आर्मी ऑफ शैतान, यानी शुरू मैं एक, क्योंकि शैतान जो है चुन चुन के निशाना बनाता है ना, कि एक इंडिविजुअल से शुरू होता है लेकिन फिर आप उस आर्मी में अपने आप को पाते हैं, जैसे उन्होंने मिसाल दी कि हसन बसरी ने अपने आप को आखिरकार उस आर्मी में पाया।
0: तो हमने डिस्कस किया कि शैतान की भी आर्मी है, खुदा की भी आर्मी है, और ये आज की दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये लोग, ये शैतानत हैं, ये शैतान का रोल प्ले कर रहे हैं। एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये जानबूझ के गुमराह करते हैं, जानबूझ के फसाद फैलाते हैं, जानबूझ के इंसानों को गुमराह करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक जवान जो है उसके सॉल्यूशंस के अगर हम लोग लास्ट में कुछ मिनट डिस्कशन कर लें, इंशाल्लाह बाद में इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक जवान की जब अलर्ट हो गया कि एक शैतान है, दुनिया है, दुनिया में शैतान है, दुश्मन है, दुश्मन शैतान की किस्में हैं, वो गुमराह करना चाहता है, मैं हिदायत पाना चाहता हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, शैतान मुझे चाहता है कि मैं कामयाब ना हूँ, अब सॉल्यूशन के तौर पर एक जवान क्या क्या करे?
2: जी देखिए, हमारी अभी जो बात हुई है उसी से हम कई सारे सॉल्यूशंस जो है वो निकाल सकते हैं। फिर उसमें एक आया था कि कुछ चीज़ें हमारे अंदर हैं कि अगर उनको हम बढ़ावा देंगे तो हम शैतान के ट्रैप में जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे। जैसे मिसाल दी गई कि मसलन हसद है, अगर हमें किसी से जो है वो हसद हो रहा है तो समझ लें कि शैतान जो है वो यहाँ पर पेनिट्रेट जो है वो कर रहा है, गुस्सा अगर कर रहे हैं, किसी ने कोई बात कह दी, अभी कोई बात कही या दो दिन पहले बात कही थी, और वो कहने वाले को कोई ऐसा मकसद भी नहीं था उसका, लेकिन हमने उसे दिल पर ले लिया, दो दिन चार दिन तक के उसी बात को सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, नमाज में भी दिल नहीं लग रहा है, मजलिस में जा रहे हैं वहाँ भी दिल नहीं लग रहा है, और उसे क्या कर रहे हैं हम, जिसे कहें कि पका रहे हैं उस बात को, तो कि उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे क्यों नहीं कहा, और मैं उसका ये जवाब दे देता, आइंदा मिलेगा तो मैं ऐसे जवाब दूंगा, तो ये क्या है, ये گویا ہم بہکانے کا موقع دے رہے ہیں شیطان کو. ایسا اگر ہوگا تو یقیناً ہم جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے. تو اس

0: को ना बढ़ने दें। अगर कहीं पर भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम इसे जहाँ पर पहला ही कदम जो है वहीं पर आकर के इसे हम रोक लें और उसे जो है वो सॉल्व कर लें। अगर किसी से हमें कोई शिकायत है, कोई परेशानी है, किसी की बात बुरी लगी है, अगर डायरेक्ट हम उससे बात करके इसको सही कर सकते हैं कि भाई आपने ये कहा था, मैं आपसे मिला, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, आपने वाकई मेरा सलाम सुना भी था कि नहीं सुना था, अगर हम इसको ऐसे बात करके जो वो ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है डायरेक्ट बात करके ख़त्म कर दें। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर छोड़ दें, कहें ठीक है जो हुआ था हुआ था, उससे मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ जाएगा। किसी ने अगर मैंने किसी को फ़ोन किया उसने कॉल रिसीव नहीं की तो मेरी शख्सियत में कौन सी कमी जो है वो आ जाएगी। क्योंकि कभी होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को लोग बढ़ाते हैं और इसमें
1: तो
0: जो है वो
1: आपकी बात से मुझे समझ में आया कि इंसान को फर्स्ट स्टेप पे अपने आप को सॉल्व, हम लोग ने डिस्कस
0: रोक
1: कर
0: लेना
1: चुके हैं,
0: चाहिए।
1: हाँ फर्स्ट स्टेप को, और इसी के अंदर कंसल्टेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप अच्छे उलमा से टच में रहें, इश्यूज को डिस्कस करें, उनसे गाइडेंस लेते रहें,
0: बिल्कुल
1: अपनी सिचुएशन को या तो खुद इल्म हासिल करके सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन हमेशा इंसान को मशवरे और कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, जो हमेशा एक मुरब्बी जो है उसको गाइड कर सकता है। एक पहला पॉइंट हो गया है कि तमाम ज़िंदगी के उमूर में अलर्ट रहें, और अलर्ट रहते के रहने के साथ जो हैं आप जो हैं पहले स्टेप पे अपने आप को सॉल्व करने की कोशिश करें, रादर देन आप लास्ट स्टेप तक जाने के लिए। जैसा
0: बिल्कुल
1: आपने भी कहा कि इंसान अवेयर रहता है बहुत सारी जगह, गलत कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पुश करता रहता है पुश करता रहता है, तो वहाँ पर आप अपने आप को पलटाएं, और खुदा ने तौबा के दरवाज़ों को हमेशा इंसान के लिए खुला रखा है। जी आप कुछ
0: जी,
1: बोलें।
0: एक और नुक्ता जो तकरीबन गुफ्तगू के दौरान इशारतन बयान हो चुका है लेकिन अगर उसको अलग से यहाँ पे ज़िक्र किया जाए तो वो है, और बुनियादी नुक्ता है काफ़ी, और वो ये है कि इंसान के लिए हर चीज़ में हक को बातिल जो है वो वाज़े रहे, यानी या वो अपने आप के लिए तबीन कर ले उसकी, यानी उसकी वजाहत वो अपने आप के लिए कर ले, या किताबों का सहारा ले या उलमा का सहारा ले जिसका ज़िक्र हुआ, यानी अगर इंसान के लिए हर मरहले में ये वाज़े हो जाए कि हक क्या है और बातिल क्या है, इस पे उसको इत्मीनान हो जाए दलीलों के साथ, तो क्या होता है वो नेक्स्ट स्टेप पे जो है इतना आसानी से जाएगा नहीं, या हत्ता पहला कदम भी वो नहीं उठाएगा शैतान की राह में। और फिर यही चीज़ जब इंसान ये करने लगता है, उसका ईमान, उसका इत्मीनान, उसका यकीन जो है जब बढ़ जाता है हक और बातिल को लेके, तो उसके कुछ मैनिफेस्टेशंस होते हैं, यानी वो इंसान के अमल में उसकी तजल्ली होती है, जिसको जो है ज़ाहरन इस रिवायत में हम देख सकते हैं कि आके पांच मुख्तलिफ काम बताए गए हैं कि जब इंसान इस तरह से हो जाता है एक मोमिन तो उसके अंदर ये चीज़ें दिखाई देना चाहिए, और यहाँ पे फिर शैतान के हीले उस पर काम नहीं करते। बड़ी खूबसूरत रिवायत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिवायत को जो नकल किया है वो इब्लीस की गुफ्तगू को नकल किया गया है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इब्लीस ने ये कहा है, काला इब्लीस खमसा तो अशिया इन लैसा ली फीहिन्ना हीलतुन, पांच चीज़ें ऐसी है जो मैं लोगों के अंदर अगर देख लूँ तो वहाँ मेरा हीला और
1: काम नहीं
0: मेरा
1: करेगा।
0: प्लान काम नहीं करेगा। वसाइरुन्नास, और इन पांच के अलावा जितने भी दूसरे जो लोग हैं कि जिनमें ये चीज़ें पाई नहीं जाती, कहता है कि शैतान कहता है फ़ी कब्ज़ती, सारे मेरे कब्ज़े में है,
1: कंट्रोल में
0: ये मेरे लिए प्रॉब्लम ही नहीं है, सारे कंट्रोल में। तो ये अहम हो जाती है कि ये कौन लोग हैं, इसमें क्या चीज़ें पाई जाती है। पांच चीज़ें, पहली चीज़ इमाम फरमाते हैं इब्लीस की ज़बान से, मन तसमा बिल्लाही अन्नियतिन सादिकतिन, यानी जो इंसान सिद्क के नियत से अगर कोई काम
1: अमल
0: करता है,
1: करे।
0: हाँ यानी खुदा के बनिस्बत एक सिद्क के नियत हो, खुदा पे कॉन्फिडेंस हो, और फिर अपने काम को अंजाम दे, वत्तकला अलैहि फ़ी जमीए उमूरही, यानी सिद्क के नियत हो, यानी खुदा के वादे पे भरोसा करते हुए खुदा पे तवक्कुल करके तमाम उमूर को अपने अंजाम दे, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, वमन कसोरा तस्बीहुहु फी लैलत व नहार, फी लैलतिन व नहार, यानी जो इंसान खुदा का जिक्र खुदा की तस्बीह दिन और रात करता है। अब देखिए इसमें गुफ्तगू है कि तस्बीह होती क्या है, उसको फ़िलहाल हम छोड़ते हैं,
1: फिलहाल
0: यानी
1: यानी कि यादें खुदा में रहता है, यानी
0: हाँ
1: हर
0: या
1: चीज में कोशिश करता है कि खुदा से अपने आप को कनेक्ट करे।
0: जी, और उसमें भी तस्बीह का जिक्र है, यानी खुदा को मुनज्जह समझता है हर
1: ऐब
0: नकाय
1: से
0: से, हर ऐब से, और तमाम ऐब को पलटाता है अपनी तरफ।
1: इन
0: ये दूसरा काम हो गया।

फिर आया है, इस तरह से चला है कि असगर के कान के नीचे से निकल के दूसरी तरफ निकल गया है। ये बच्चा जो है ज़बह किया गया है। हजरत हुज्जत की ज़ियारत में भी अल मज़बूह फी हिज्र अबी, वो बच्चा जो अपने बाप के हाथ में ज़बह कर दिया गया है। अज़दारन हुसैन दूसरे शहदा सवाए हुसैन के आशूर के दिन ज़बह नहीं किए गए हैं। बस एक हुसैन थे जो मज़बूह थे और असगर थे जिनको ज़बह किया गया है। और इसलिए जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में असगर को दफन करने के बाद जब खैमे के पास आते हैं और सकीना ने बाबा से कहा है कि आप अंदर आइए, और रबाब सामने आती है कि मौला मेरा अली कहाँ है, उस वक्त जो है इमाम ने अपने आबा के दामन को हटाया, तीर के निशान को बताया। वो मजलूमा माँ जो है सिर्फ एक जुमला कहती है, या अली अमिसलुका युज़बह, ऐ अली असगर क्या तुझ जैसा नन्ना बच्चा भी आशूर के दिन करबला में ज़बह कर दिया जाए। अला लानतुल्लाह अल कौम अज़्ज़ालिमीन, सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमु अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदावंदा इस क़लील इबादत कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे तौफीकात में इजाफ़ा फरमा। खुदावंद आलम इस्लाम में सुलह और अमन की फ़िज़ा पैदा कर, दुश्मनान इस्लाम और तकफीरी अफवाज की तमाम सलाहियतों को नीस्त नाबूद फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजिल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।